0: उनके प्रति अपार निष्ठा से प्रेरित होकर उन्होंने अनेक यज्ञ किए। प्रत्येक शिव भक्त को अपना स्वामी मानना और प्रतिदिन पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना इनका नियम था। तिरुवारूर जाकर भक्त श्रेष्ठ सुंदरमूर्ति के साथ हुई इनकी मैत्री से इन्हें जीवन की सार्थकता का अनुभव हुआ। इसी से इन्हें मोक्ष लाभ मिला। सोमासी मारद के जीवन में आए एक भारी परिवर्तन का उल्लेख चक्किलर, जो कि तमिल के एक बहुत बड़े कवि थे, ने अपने पेरिय पुराण में कहा है। अपने कुल की रीति से यज्ञ याग का अनुष्ठान तो सोमासी करते ही थे, पर परंपरा अनुसार इंद्र वरुण आदि वैदिक देवताओं के स्थान पर शिव को प्रधानता देते थे। ध्यान के लिए पंचाक्षरी का प्रयोग करने से पता चलता है इन्होंने दक्षिण के शैव वैदिकों का अनुसरण किया। कर्मकांड में श्रद्धा रखते हुए यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले अपनी निष्ठा के कारण उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तिरुज्ञान संबंधर के जीवन चरित्र से ज्ञात होता है कि संबंधर जैसे अलौकिक पुत्र को पाकर भी उनके पिता शिवपाद हृदय यज्ञों का निरंतर अनुष्ठान करते थे। नन्हे बालक संबंधर को विभिन्न शिव मंदिरों में पिता शिवपाद हृदय अपने कंधों पर उठाकर चलते थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पिता होने के नाते मेरा मन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, परंतु शिरकारी में जाकर यज्ञों का अनुष्ठान करना मेरा दायित्व है। कर्तव्य निर्वाह के लिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। तिरुज्ञान संबंधर के संपर्क में आए वैदिक ब्राह्मण उनकी महत्ता को जानते हुए भी अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर सदा उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। सोमासी मारल ने कर्मकांड में आसक्ति रखते हुए विधिवत अनुष्ठान द्वारा सोमयाग करके सोमयाजी की उपाधि प्राप्त करके अचानक अपने मार्ग को छोड़ दिया और तिरुवारूर चले आए। वहां अपनी कुल मर्यादा तजकर मिश्र विवाह कर लिया। उसी नगर में वे नंबी आरूर के साथ ही बस गए। मित्र रूप में सुंदरमूर्ति को प्राप्त कर वे मुक्ति को प्राप्त हुए। चक्किलर ने इस मैत्री में एक विशेषता वर्णित की है। सुंदरमूर्ति ने भी मिश्र विवाह किया था। वे भगवान शिव को की परम कृपा के पात्र थे। ऐसे संत के पद कमलों पर भक्ति मार्ग करना अपने दोषों से मुक्त होने से होने का सरल मार्ग है। इसी भावना से वे सुंदरमूर्ति के भक्त बने। क्रिया मार्ग और भक्ति मार्ग का सूक्ष्म अंतर संकेतित करना इस कथा का लक्ष्य है। इसीलिए सोमासी मारद एक महान दक्षिण के संत है और शिव भक्त में गिने जाते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसन्मे मे त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च मे मे च त्रयस्त्रिगुंसच्च

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Sheetam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodham Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये, गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम्, त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातुमाम्, विद्यावितरणशीलम् विद्याधीशम् विरिंचि हरिवंद्यम्, विश्वाधिक विबुधेड्यम् विजयोपास्यम् विनौमि विषकंठम्, श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते புண்யே விரிஞ்சே புரே, நித்யம் சந்நிஹிதம் கிலாகலயிதும் க்ஷீராபிஷேகாதரம், ஸ்ரீகாருத்மத வல்லிகா சஹசரம் மார்கே சஹாயம் நிருணாம், ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவத வரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய பிரதம ஸ்லோக. ஸ்லோகேஸ்மின் சமுத்திரமதன சமயே ஹாலாஹல விஷராஜ பிரசரண ரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானானாம் பிரம்மாதிதேவானாம் ஆர்த்திஹந்தாரம் தத்விஷாசினம் பகவந்தம் நீலகண்டம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. ஏவம் பவதி ஸ்லோகஹ. க்ஷீராம்போநிதி மந்தனோத்பவ விஷாத் சந்தஹ்யமானான் சுரான் பிரம்மாதீன் அவலோக்கியயஃ கருணயா ஹாலாஹலாக்யம் விஷம் நிஷங்கம் நிஜலீலையா கபலயன் லோகான் ரரக்ஷாதராத். ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ்ய பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி. அன்வயஹ ஏவம் பவதி: க்ஷீராம்போநிதி மந்தனோத்பவ விஷாத் சந்தஹ்யமானான் பிரம்மாதீன் சுரான் கருணயா அவலோக்ய யஹ ஹாலாஹலாக்யம் விஷம் நிஷங்கம் கபலயன் நிஜ லீலையா லோகான் ஆதராத் ரரக்ஷ சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. ஸ்லோகேஸ்மின் ப்ரயுக்தஹ ஏகைகோபி ஷப்தஹ ஸ்ரீமத் பாகவதஸ்ய அஷ்டமஸ்கந்தஸ்ய சப்தமாத்யாயஸ்ய கதிபய ஸ்லோகானாம் சாரஹ. ஸ்ரீமத் பாகவதஸ்ய அஷ்டமஸ்கந்தஸ்ய சப்தமே அத்தியாயே பிரதிபாதிதம் சமுத்திரமதன சமயே ஹாலாஹல விஷராஜ பிரசரண விருத்தாந்தம் சங்கிருண்ஹந்தி. யஹ ஹாலாஹலாக்யம் விஷம் கபலயன் நிஜ லீலையா லோகான் ஆதராத் ரரக்ஷ சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயண பகவான் கங்காதர மே கதிஹி இதி. யஹ அரக்ஷியமானானாம் ஷரண்யஹ ஹாலாஹலாக்யம் விஷம் க்ஷீராப்தே சுரபியாதீனாவிர்பாவாத் பூர்வமாவிர்பூதம் யத்ரவ்யம் தத் கபலயன் ஆஸ்யேன கிருண்ஹன் நிஜ லீலையா ஆத்மீயேன விலாசேன லோகான் பிராணபரீப்சூன் சகலதேவாசுராதீன் ஆதராத் யத்நாத் ரரக்ஷ சஹ பூதபாவனஹ ஆர்த்தத்ராணபராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி. தத்ர கரலபக்ஷணே ஹேதுமாஹு க்ஷீராம்போநிதி மந்தனோத்பவ விஷாத் सन्दह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य इति क्षीराम्भोनिधि मन्थनोद्भवविषात् उग्रवेगात् गरात् सन्दह्यमानान् भृशं भीतानित्यर्थः ब्रह्मादीन् ब्रह्मविष्ण्वादीन् सुरान् देवान् करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अवलोक्य शरणागतांस्तान् दृष्ट्वा इत्यर्थः कथं तत् उग्रवेगम् असह्यं च विषं भगवान् कबलयामास इत्याहुः निःशङ्कम् इति शङ्का त्रासः तस्याः अभावः निःशङ्का निःशङ्कम् इति क्रियाविशेषणमव्ययम् इयं च कथा एवं कथ्यते श्रीमद्भागवते षष्ठे चाक्षुषे मन्वन्तरे देवसम्भूत्यां वैराजस्य पुत्रत्वेन भगवान् नारायणः अजितरूपेण अवततार समुद्रमथनसमये कूर्मावतारेण मन्दरं स्वपृष्ठे धृत्वा देवासुरसाहाय्यं चक्रे तत्रैव पुनरपि अजितावतारेण स्वपाणिभ्यां क्षीराब्धिं मथित्वा साहाय्यं चक्रे अमृतार्थं देवासुरैः समुद्रमथनस्य हेतुं पृष्टे सति परीक्षिता राज्ञा तत्कथां वक्तुमारेभे शुकब्रह्म अमृतावाप्त्यर्थं समुद्रं मथनद्भिरपि देवासुरश्रेष्ठैः न तस्मादमृतं जज्ञे तस्मात् भगवान् अजितः स्वयं तं मथितुमारेभे इत्युक्तम् मथ्यमानात् तथा सिन्धोः देवासुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितस्वयं मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योत विद्युत् मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचस्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिः जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथ्नन्मथना प्रतिगिरिरिवा शोभताथो धृताद्रिः इति अजितमथनादेव समुद्रात् द्रव्यततिर्जज्ञे आदौ हालाहलाख्यं विषं जज्ञे इत्याह निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तमेनोन्मकराहिकच्छपात् तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम् इति अतिभीषणं तं विषराजं सोढुमक्षमाः देवादयः किं चक्रुः इत्युच्यते तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यं भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्गसेश्वराः अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् इति ननु विष्णुवतारभूतस्य भगवतः अजितस्य साहाय्ये सत्यपि तेन हरिणा अरक्ष्यमाणाः देवादयः किमिति सदाशिवं प्रति दुद्रुवुः गर्भक्षणे तस्यैव इतरासाध्यकर्मकरत्वात् अयमेव व्यासाचार्याणामाशयः ब्रह्मतर्कस्तवे प्रतिपादितः श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः गङ्गाधृता न भवता शिवपावनीति नास्वादितो मधुर इत्यपि कालकूटः संरक्षणाय जगतां करुणातिरेकात् कर्मद्वयं कलितमेतदनन्यसाध्यम् इत्यनेन श्लोकेन अत्र मध्वाचार्यादिभिर्वैष्णवाचार्यैः रुद्रस्य यशसोऽर्थाय स्वयं विष्णुर्विषं प्रभुः न सञ्जहरे समर्थोऽपि वायुं चोचे प्रशान्तये इत्याद्युक्तं वचनजातम् अपास्तम् भगवतो नारायणस्य अचिन्त्याद्भुतगुणमहिमविभूतिवैभवनिरूपणपरे श्रीमद्भागवते प्रबन्धे परब्रह्मकोटिभूतः सदाशिवोऽपि स्तुतः इति स्फुटमेव वायुं चोचे प्रशान्तये इति कालकूटभक्षणादपि शिवस्य सुखितत्वे वायुदेवसहायत्वोपन्यासः क्वचिदपि न पुराणेषु श्रुतः कालकूटभक्षणसमर्थत्वे तद्भक्षणादपि सुखितत्वे च हेतुः शिवस्य पराक्रमः इत्येव व्यासाचार्याणामुक्तिः तत्र वायुदेवसहायत्वकथनं व्यासाचार्यैः नोक्तम् इति निश्चप्रचमेव। श्रीवैष्णवाचार्याः अपि स्वग्रन्थेषु क्वचिदपि वायुना विशासनं न प्रोचुः, अपि तु सदाशिवात् पूर्वं विष्णुना हालाहलविशासनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं तस्मात् सदाशिवाद् विष्णोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति केचित् श्रीवैष्णवाचार्याः। अत्र सेश्वराः इति पदं सहेन्द्राः इति व्याख्यातं सत्यधर्मतीर्थैः, तदप्यपास्तम् अत्र ईश्वरशब्दः विष्णवतारभूतं भगवन्तम् अजितं द्योतयतीति भागवतवचनात् वायुपुराणवचनाच्च स्पष्टम्। वायुपुराणस्य चतुःपञ्चाशेऽध्याये ब्रह्माणं प्रति देवादीनां वचनं विषेणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमत्विष निर्दग्धो रक्तगौराङ्गः कृतः कृष्णो जनार्दनः दृष्ट्वा तं रक्तगौराङ्गं कृतं कृष्णं जनार्दनं भीताः सर्वे वयं देवाः त्वामेव शरणं गताः इति। अत्र कृष्णजनार्दनपदप्रयोगः भगवन्तम् अजितं द्योतयति, देवैः शरणीकृतस्य ब्रह्मणः तान् प्रति प्रत्युक्तिः, तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गवाः न शक्नुवन्ति वै सोढुं वेगमन्ये तु शङ्करात् इति। अनेन विधिहर्यादिभिरप्यसाध्ये कर्मणि शिवस्य सुखविधायकत्वमुक्तं। हालाहलविषराजाशने सकलपुराणवचः प्रख्यापितस्य शिवप्रभावस्य अनादेयः वेदवैदिकद्रोहः देवताद्रोहश्च। तत्गरलभक्षणसमर्थं सदाशिवं नमश्चक्रुः देवासुराः इति भागवतस्य अग्रिमे श्लोके निरूप्यते। विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्याः भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोः तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः इति। अस्मिन्नध्याये प्रजापतिभिः कृता शिवस्तुतिः अवधेय, सा हि ब्रह्मविष्णुपुरोगमैः देवासुरैः कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनशरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् इति प्रथमश्लोकः। अत्र प्रजाः श्रीपार्वतीपतिमेव हरिहरयोः अभेदविषये संशयविपर्ययजननार्थं सङ्कलय्य स्तुवन्ति इत्येव अस्माकं मतम्। त्वच्छरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्राहि इति निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिसन्दोहसम्प्रतिपन्नस्य निरस्तकर्तृकर्मादिभेदप्रपञ्चस्य अखिलवाङ्मनसपथातीतस्य स्तुतिगोचरीकर्तुमशक्यस्य निर्गुणस्य शिवतत्त्वस्य परमशिवशब्दितं सगुणं रूपं स्तुतेरस्याः विषयः। तत्र तत्र स्तुतिपदैः हरिरेव तु तद्गतः स्तूयते तो युक्तमेव गुणाधिक्यवचोपितो इति मध्वाचार्यैः प्रकटितः आशयः अत्यन्तासङ्गतः। देवतैकामुद्दिश्य कृतां स्तुतौ सैव देवतास्तुत। प्रजापतिभिः कृतया स्तुत्या तुष्टस्य शिवस्य प्रतिक्रियामाह भगवान् श्रीशुकः, तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देवः इदमाह सतीं प्रियाम्। अहोबत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे, एतावान् हि प्रभोरर्थः यद्दीनपरिपालनम् इति। अत्र एकचत्वारिंशश्लोकव्याख्याने सत्यधर्मतीर्थैः पद्मपुराणवचनत्वेन आम्नाताः द्वादश

दाता स्वप्ने जागृति वाये स पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।

ಆತ್ಯೇತತ್ ಸಮಸ್ತಂ ಜಗತ್ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಕಹತೆ ಹೇ ಆತ್ಮ ಹೀ ಸಭೀ ಕೋ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ. ಆತ್ಮಾ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸೇ ಹೀ ಸಭೀ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೋ ರಹೇ ಹೈ. ಏಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ವೇದಾಂತ ಕಿ ಜೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹೈ ಉಸ್ ಪರ್ ಸಂಕೇತ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಹಮ್ ಜಬ್ ಭೀ ಯೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಮೈ ಇಸ್ ಪದಾರ್ಥ ಕೋ ಜಾನ್ತಾ ಹೂಂ, ಇಸ್ಕಾ ಮತಲಬ್ ಯೇ ನೀ ಸಮಜ್ ಲೇನಾ ಕಿ ಪದಾರ್ಥ ಕೋ ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಹೀ ಇಸ್ ಪದಾರ್ಥ ಕೋ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮೈ ಸೇ ಅಭಿನ್ನ ವೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಔರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇ ಅಭಿನ್ನ ಮೈ. ಜೀವಾತ್ಮ ಇಸ್ ಅಭಿನ್ನತಾ ಕೋ ನಹೀ ಜಾನ್ತಾ ಹೈ, ಇಸಿಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲಗ್ ಹೈ ಔರ್ ಮೈ ಅಲಗ್ ಹೂಂ ಯೇ ಮಾನ್ತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಇಸಿಲಿಯೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಯೇ ಮಾನ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಜಗತ್ ಕೆ ಪದಾರ್ಥೋ ಕೋ ದೇಖ್ನೆ ವಾಲಾ ಜಾನ್ನೆ ವಾಲಾ ಮೈ ಹೂಂ. ಇಸ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉಸ್ಕಾ ಅಹಂಕಾರ ಹೀ ಕಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಅಭಿಮಾನ ಹೀ ಕಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಇಸ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉಸ್ಕಿ ನಾ ಸಮಜ್ ಹೀ ಕಾಮ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ. ವೇದಾಂತ ಜಬ್ ಆಪ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಯಾ ಮೈ ಕಹತಾ ಹೂಂ ಯಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಹತೆ ಹೈ, ವೋ ಪ್ರಯವಚಿ ಹೈ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಹೈ, ಏಕಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಪದಾರ್ಥೋ ಕೋ ಕೈಸೆ ಜಾನ್ತಾ ಹೈ, ಯಾ ಮೈ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಪದಾರ್ಥೋ ಕೋ ಕೈಸೆ ಜಾನ್ತಾ ಹೂಂ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕೋ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆವೇಗಾ ತಬ್ ಫಿರ್ ಮೈ ಅಪ್ನೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸಮಜ್ ಪಾಉಂಗಾ, ಔರ್ ಮೈ ಅಪ್ನೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಠೀಕ್ ಸೇ ಸಮಝೂಂಗಾ ತೋ ಫಿರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಭೀ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ಜಾಯೇಗಾ. ಔರ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯಹೀ ಕಮಜೋರಿ ಕರ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಕಿ ನಾ ಮೈ ಅಪ್ನೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಠೀಕ್ ಸೇ ಸಮಜ್ ಪಾತಾ ಹೂಂ, ನಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಠೀಕ್ ಸೇ ಸಮಜ್ ಪಾತೆ ಹೈ. ಕಿಸಿ ಬಹನ್ ನೇ ಕಹಾ ಥಾ ಕಲ್ ಕಿ ಅಡಚನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಸಬ್ ಕುಛ ಸಮಜ್ತೆ ಹುಯೆ ಭೀ ಅಡಚನ್ ಕಹಾ ಹೈ, ಸಮಸ್ಯಾ ಕಹಾ ಹೈ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಕ್ಯೂ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ. ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಯಹೀ ಥಾ, ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಸಮಜ್ ಅನುಸಾರ ಕರ್ತೆ ನಹೀ ಹೈ, ಇಸಿಲಿಯೇ ಅಡಚನ್ ಹೈ. ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ ಹಟಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ ಹಟಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಮಜ್ದಾರಿ ಬಡಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಸತ್ಸಂಗ ಔರ್ ಸಮಜ್ದಾರಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೀ ಹೈ ಕಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ ಹಟಾಯಾ ಜಾಯೆ. ಅಧ್ಯಾಸ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಯೇ ಭೀ ಹಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಕೈಸೆ ಬನ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಕೈಸೆ ಛೂಟತಾ ಹೈ ಯೇ ಭೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ. ನಾ ಸಮಜ್ದಾರಿ ಸೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಸಮಜ್ದಾರಿ ಸೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಕಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಯೇ ಭೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಜಾನ್ತೆ ಹುಯೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ ಬಚಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ. ಹಮಿ ಹೀ ಉಸ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಬಚಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ. ಸೋ ಕೈಸೆ ಮಹಾರಾಜ್, ಕಲ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಭೀ ಯೇ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹೀ ಥೀ. ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ ಹಟಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೊ ಹಟಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ವೋ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಹೀ ಜುಟಾ ಪಾತೆ ಹೈ. ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಯೇ ಹೈ, ಹಮ್ನೆ ಸಂಕೇತ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಕೇವಲ ಆಪ್ಕಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ಕಹ ರಹಾ ಹೂಂ, ಯೇ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಭೀ ಯಹೀ ಸಮಸ್ಯಾ ಹೈ, ಕೇವಲ ಆಪ್ಕಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ಕಹ ರಹೇ. ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ ಸಮಜ್ ಭೀ ರಹೇ ಹೈ, ಅಧ್ಯಾಸ ಹೀ ಸಾರೆ ಅನರ್ಥ ಕಾ ಕಾರಣ ಹೈ ಯೇ ಬಾತ್ ಭೀ ಅಚ್ಛಿ ತರಹ ಸಮಜ್ ರಹೇ ಹೈ, ಔರ್ ಸಾರೆ ವೇದಾಂತ ಕಾ ಔರ್ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಸೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ ಹಟಾನಾ ಹೈ ಯೇ ಭೀ ಹಮ್ ಸಮಜ್ ರಹೇ ಹೈ. ಆಪ್ ಸಮಝೋ ನಹೀ ಸಮ, ಹಮ್ ತೋ ಸಮಜ್ ರಹೇ ಕಮ್ ಸೇ ಕಮ್, ಫಿರ್ ಭೀ ಹಮ್ ಹೀ ಖುದ್ ಇಸ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಕೋ ಬಚಾಯೇ ರಖೇ ಹೈ,
क्योंकि इस अन्नमय कोष आत्मानंद गिरी मैं हूं, ये मेरा अध्यास है कि नहीं? मेरा अध्यास क्या है? ये अन्नमय कोष, पंचभूतात्मक अन्नमय कोष शरीर, यही मैं हूं, ये मेरा अपना अध्यास है। और मैं समझदारी होने पर भी इस अध्यास को स्वयं रक्षा करता फिर रहा हूं, मैं ही बचाता फिर रहा हूं। क्यों? थोड़े से कपड़े में यदि गंदा हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे, ये चिंता मुझे पहले सताने लगती है। और ठीक से मत्थे में विभूति नहीं लगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, आज स्वामी जी ने विभूति त्रिपुंड क्यों नहीं लगाया, ये चिंता सताने लगती है। तो रोज लगाते थे त्रिपुंड, आज त्रिपुंड क्यों नहीं लगाया, लोग क्या कहेंगे। अब त्रिपुंड कोई मेरे से कोई संबंध थोड़ी है, त्रिपुंड का संबंध स्थूल शरीर अन्नमय कोष से है। और उस अन्नमय कोष में लगा हुआ जो त्रिपुंड है, मैं मानता हूं कि मुझे लगा हुआ है, मैं लगा रहा हूं। और एक दिन न लगे तो लोग क्या कहेंगे, ये देख लो। और एक दिन ठीक से कपड़ा यदि ठीक से नहीं लगाया तो लोग क्या कहेंगे, भाई कपड़े भी ठीक से पहनना होगा। सुबह उठते ही डर लगता है, डर इस बात की कि कोई नंगा ना देख ले है। मैं ही बचा रहा हूं अध्यास को, शरीर की अध्यास, कपड़ों की अध्यास, इनके साथ मैं को अपने संबंध जोड़ रहा हूं। और यदि ठीक से बटन यदि नीचे ऊपर हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कपड़ों की अध्यास ऐसी है कि शरीर के अध्यास तो परे की बात छोड़ दो, हम तो इतनी दूर कपड़ों के अध्यास पर ही मरे जा रहे हैं, इसी की रक्षा करने लग रहे हैं। रोज साफ धुले हुए कपड़े होने चाहिए, यदि एक दिन थोड़ा गंदा कपड़ा हो गया, एक दिन धोने के लिए समय नहीं मिला या कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन प्रेस नहीं हुआ कपड़े में तो लोग क्या कहेंगे। अध्यास, और इन्हीं अध्यासों की हम व्यवहारिक सत्ता में सारा समय प्रयत्न इन्हीं अध्यास की रक्षा करने में लगा रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही है कि अरे कपड़ा गंदा हो गया तो होने तो इस कपड़े से मेरा क्या संबंध है, अरे भाई कपड़े के बटन नीचे ऊपर हो गया तो होने दो उससे मेरा क्या संबंध है, अरे शरीर में कपड़ा नहीं है तो नहीं होने दो, कपड़ा सब निकलता है तो निकल जाने दो, नंगा होता है तो कपड़ा शरीर नंगा होता है, मैं थोड़ी नंगा होता हूं। हिम्मत नहीं हो रहा है, हो रहा है हिम्मत, हो सकता है आपकी हिम्मत होगी नहीं होगी। हाँ, लोग क्या कहेंगे। मीरा ने हिम्मत किया, मारा झटका, निकल गई, अध्यास टूट गया। खानदान की बहू हूं, हमारा तो यह अध्यास है, और वही अध्यास हमें बांधे रखती है। समझते हुए कि इस अध्यास से निकलना है, समझते हुए भी यही अध्यास बंधन का कारण है, यही अध्यास दुख का कारण है, यही अध्यास विक्षेप और अशांति का कारण है, ये जानते हुए भी हिम्मत नहीं करते हैं। और मेरा हिम्मत कर गई है। हाँ, खानदान की बहू होने से क्या होता है, मुझे इससे क्या, यही तो मेरे बंधन का कारण है। मार गई लात और निकल गई, हिम्मत कर गई वो। लोग कहे मेरा भैरी बावरी, लोगों ने तो कहा है, मेरा ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, मेरा ने ये नहीं सोचा है। तो अध्यास टूटा, खानदान के अध्यास जो था वो टूट गया, देह का जो अध्यास था वो टूट गया। हमारा तो ये अध्यास है कि ठीक समय पर यदि दवा न खाएं, एक दिन यदि दवाई की डोज छूट गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा भाई, है? क्या होगा, आकाश तो गिरेगा नहीं, गिरेगा। तुम यदि एक टाइम एक समय दवा की डोज न खाए तो आकाश गिर पड़ेगा, आकाश तो तुम मर जाओगे तो भी नहीं गिरेगा। आकाश तो ऐसा चीज है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि ये सारी आकाश को हम ही संभाल रहे हैं।
क्योंकि हम दवाई खा रहे हैं और जी रहे हैं और आकाश को हम ही धान रहे हैं, संभाल रहे हैं, और यदि हम मर गए तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ खत्म, तुम्हारा अध्यास खत्म होगा, तुम्हारी भ्रांति खत्म हो जाएगी। और क्या खत्म होगा भाई? तो घर से निकल नहीं पाते, निकलेंगे तो कहां जाएंगे? एक दिन भोजन नहीं छोड़ सकते, भोजन छोड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ये जो अध्यास हम बचाए रख रहे हैं, इसी की रक्षा करते हैं, जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं, और जो जान रहे हैं कि जो हमें दुख दे रहा है, सत्संग के माध्यम से जान भी गए हैं कि यही हमें दुख दे रहा है, और सत्संग के माध्यम से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इससे संबंध विच्छेद करना ही तुम्हारे शांति का कारण है, सुख और शांति का हेतु है, सत्संग से भी सिद्ध हो गया, युक्ति से भी सिद्ध हो गया है। जब भी इससे हमने संबंध तोड़ा है, चाहे प्राकृतिक ही सही, हम बड़े सुखी बड़े आनंदित हुए हैं। जागृत की संबंध हमने छोड़ दी है तो हम बड़े जागृत की समस्या से हम मुक्त हो चुके हैं। स्वप्न के संबंध छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य छोड़ दिया है तो बहुत झंझटों से हम मुक्त हो गए। जागृत प्रपंच का स्वप्न में कोई मतलब नहीं है, स्वप्न प्रपंच का सुषुप्ति में कोई मतलब नहीं है। सुषुप्ति में आप स्वप्न और जागृत प्रपंच दोनों से मुक्त हो गए, क्या आनंद। सुखम अहम अस्वाप्सम, जागते ही बड़े गर्व से सबको सुनते हुए घोषणा करते हैं कि आज क्या आनंद में सोया। कैसे सोए तुम आनंद में? उसका कारण क्या है? क्योंकि शरीर के साथ, देह गेह के साथ, शरीर के साथ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन इंद्रिय आदि विषयों आदियों से संबंध का विच्छेद हो जाना ही वह तुम्हें सुख से सोने का कारण बन गया है। लेकिन वहां से दुर्भाग्य की बात है कि निकलने का कारण लेकर गए थे, वही तुम्हें फिर जगा देती है। अविद्या को निवृत्त करके नहीं गए थे, इसलिए उस अविद्या के चलते फिर जगना पड़ता है। फिर जगते हैं, फिर सारे पदार्थों से तादात्म अध्यास हो जाता है, फिर वही सारे समस्याओं से जूझते रहते हैं। और जब प्राकृत ही सही ये संबंध टूट जाता है तो बड़ा आनंद आता है। तो वेदांत का ये कहना है, ये तो प्रकृति ने व्यवस्था मिला दी है तुम्हें ये अभ्यास करने के लिए कि जिसके साथ तुम तादात्म्य जोड़ रहे हो उसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है। ये समझाने के लिए प्रकृति ने यह व्यवस्था मिलाई है कि कभी जागृत में आ जाओ, कभी तुम सुषुप्ति में चले जाओ, ये संभव है ये बताने के लिए। लेकिन ये जो प्रकृति के द्वारा हुआ है ये संबंध विच्छेद, वह प्राकृत हुआ है। तुम अपने विचार से ये विच्छेद कर पाओ तो फिर दोबारा ये समस्या तुम्हारे सामने नहीं आएगी। तो हम हिम्मत नहीं कर पाते, रात को सोते समय भी सो तो जाते हैं और डरते हुए सोते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सुबह सोते ही रह जाएं। और 7:30 बजे प्रेमपुरी आश्रम ना पहुंचे तो लो जी यही तो अध्यास है। नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, क्या आकाश गिर जाएगा? जिस दिन नहीं पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे तो नहीं पहुंच गए, आकाश के गिर जाएगा। बोले नहीं मारा, सत्संग छूट जाएगा। अरे छूट जाएगा तो छूट जाएगा, क्या बिगड़ेगा तुम्हारे स्वरूप में है? तुम्हारे स्वरूप में सत्संग छूट जाएगा तो क्या बिगड़ेगा? लेकिन चिंता है कहीं सत्संग छूट न जाए, बहुत कुछ अनर्थ न हो जाए। अरे तुम्हारे स्वरूप में कुछ अनर्थ होने वाला नहीं है, तुम्हारा शरीर इतना, तुम्हारा स्वरूप इतना कमजोर नहीं है। तुम्हारा स्वरूप बता रहा हूं, तुम्हारा स्वरूप इतना कमजोर नहीं है कि एक दिन के सत्संग छूट के ही वो खत्म अनर्थ हो जाए। अरे भाई ये तो सब अध्यास तोड़ने की बात है, तुम्हारा स्वरूप से तो कोई संबंध ही नहीं है, इतनी समझ। निश्चिंत हो जाओ, जग गए तो आ जाना, नहीं जगे तो नहीं आना, पक गया तो खा लेना, नहीं पके तो नहीं खाना। अरे नहीं पका तो क्या होगा? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे खाते हुए कोई जी रहा है क्या?
जितने भी मरे हैं ना वो खाते हुए ही मरे हैं, बिना खाए कोई नहीं मर रहा है। और अब भी ऐसे करेंगे, खाते हुए ही मरेंगे। अब मरते समय कितनी भोजन रसोई में पड़ा रहेगा, रसोईया बनाता रह जाएगा और बना हुआ भोजन भी पड़ा रहेगा। और शायद कहेंगे मम्मी थोड़ा सा खा लो, पापा थोड़ा खा लो, और वह रह जाएगा वहीं सिराने में रहेगा, टेबल में रहेगा। न खाने से नहीं मर रहा है, जबकि मरता ही है खाने से, क्योंकि मैं भोक्ता हूं जो कह रहा है वही अध्यास ही मैं मरने वाला हो जाता है, क्योंकि भोक्ता ही मरता है। आत्मा तो अभोक्ता है तो क्या मरेगा भाई? आत्मा अभोक्ता है, अकर्ता है तो क्या मरेगा? कर्ता भोक्ता ही तो मरता है, और उसी को हम सही मान रहे हैं। यही भ्रांति तोड़ना बहुत जरूरी है। कैसे ये सारे जगत का पदार्थ का भान होता है उसकी प्रक्रिया यहां हम बता रहे हैं। नाना छिद्र घटो दर स्थितमः

0: शांतमनुभात एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दृष्टांत को समझने से पहले दृष्टांत को समझना जरूरी है, इसलिए शंकराचार्य जी हमेशा दृष्टांत ही देते हैं। हर बात को समझाने के लिए कोई न कोई दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत का मतलब होता है कि जो तुमने अनुभव किया है वो दृष्टांत सिद्धांत, देखे हुए सिद्धांत को ही दृष्टांत के रूप में तुम्हें समझाया जा रहा है। दृष्ट, दृष्ट शब्द का अर्थ होता है देखा हुआ, अनुभव किया हुआ वस्तु को दृष्ट बोलते हैं, न दिखा हुआ अनुभव में न आए हुए वस्तु को अदृष्ट बोलते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष दृष्ट अदृष्ट, अनुभव में क्या आ रहा है। नाना छिद्र घटो दर स्थित महा दीप प्रभास्वरम, हम लोग अक्सर ये उसका प्रतीक है। हम दिवाली तो हर साल मनाते हैं और दिवाली में हम घड़ा खरीद के लाते हैं दीपावली के लिए, घड़ा खरीद के लाते हैं मिट्टी का, और वो घड़ा छिद्र छिद्र वाला होगा, अनेक छिद्रों वाला होगा। और किस लिए लाते हैं, तो आजकल तो बत्ती की रक्षा करने के लिए अनेक वस्तुएं, अनेक ऐसे वस्तुओं का निर्माण हो गया है। पहले के जमाने में ये सब थे नहीं, ये सब उपाय नहीं थे, तो अखंड बत्ती बालने के लिए, जलाने के लिए लोग ऐसे छिद्रयुक्त घड़ों का प्रयोग किया करते थे। नाना छिद्र घटा, अनेक छिद्र से युक्त हुआ हुआ घड़ा, यानी दिवाली के समय में बत्ती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए प्रयोग करने वाला घड़ा।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sakya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Nayanmar ki kahani, jinka naam Shakyar hai. Bhakti marg mein aham ka sampurna tyag karke भगवान की शरण में जाना अनिवार्य है। भक्ति भावना और संवेदना पर आधारित है, अतः ज्ञानवाद से परे है। भक्ति में बस इस बात का ज्ञान चाहिए कि स्वामी कौन है और मैं कौन हूँ, मेरा और उनका क्या संबंध है। ज्ञान मार्ग में अहम को आधार मानकर ये वस्तु को जानने का उपक्रम करना होता है। तिरुचंगमगई नामक गाँव में शाक्यर का जन्म हुआ। वह प्राप्त करने पर निकट स्थिति कांचीपुरम जाकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने सभी मार्गों का अनुसरण किया। बाद में वे शाक्य वंश के महात्मा बौद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। निरंतर साधना के बाद भी उनकी मानसिक अशांति दूर न हुई। शनै शनै उन्हें ज्ञान हुआ कि कर्ता कर्म, कर्म का फल और फल प्रदाता, इन चारों को केवल शैव धर्म स्वीकार करता है। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि चाहे किसी स्थिति में रहें, चाहे जैसी वेशभूषा रहे, शंकर शिव के पद कमलों पर आस्था रखना ही सच्चा धर्म है। अपने बौद्ध भिक्षु के वेश का त्याग किए बिना वे मन से शिव भक्त बन गए। एक दिन राह चलते आत्मविस्मृति की स्थिति में उन्होंने एक कंकड़ उठाया और उसे शंकर के निराकार रूप यानी कि शिवलिंग पर फेंका। फेंकते समय मन में अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। उन्हें यही ईश्वर इच्छा प्रतीत हुई और प्रतिदिन यही काम वे करने लगे। एक दिन वे कंकड़ मारना भूल गए और भोजन खाने बैठ गए। एकाएक ध्यान आया तो भोजन छोड़कर शिवलिंग की ओर दौड़े और कंकड़ मारा। जनश्रुति है कि शिवलिंग से स्वयं शिव प्रकट हुए और उन्होंने शाक्य को अपना लिया। प्रारंभ में शाक्य नायनार बौद्ध थे। ज्ञान और तर्क पर आधारित बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले शाक्य भक्ति मार्ग में लग गए। शिवलिंग पर कंकड़ मारने पर उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। कारण तो वे न जान पाए, परंतु असीम निष्ठा से भक्ति के अतिरिक्त कुछ और बिना सोचे वे प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर कंकड़ मारने लगे। उन्हें लगा कि वह ईश्वर प्रेरणा थी कि उन्होंने शिवलिंग पर कंकड़ मारा। साधारण प्राणी के लिए जो कंकड़ है, शिव के लिए वही पुष्प है। अन्य लोग इसका क्या अर्थ लगाते हैं, इसे किस रूप में लेते हैं, उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। उनकी वेशभूषा बौद्धों की थी, पर शिव के ऐसे भक्त बन गए कि आत्मबोध खोकर शिव की कृपा के पात्र बन गए। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
4: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
5: भूगर्भविदों का एक मान्यता है कि वो भूकंप जितने रिएक्टर स्केल में आ गया है, आना चाहिए था, उतने में नहीं आया। वो 9 से कम का तो आना ही नहीं चाहिए था। भूगर्भविद कहते हैं कैलकुलेशन करके 9 से कम का नहीं आना चाहिए था, 9 से ऊपर का ही आना चाहिए था, लेकिन 8 स्केल का आ गया, गनीमत है, आ गया। बाकी वो स्केल 8 और 9 का जो कैलकुलेशन है वो पूरा करना है, तो बोले उस 9 स्केल को पूरा करने के लिए दिन में 5-6 झटके लग रहे हैं, ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। अब ये प्रतिदिन 2 महीना हो चुका है, अभी भी झटके लग रहे हैं। 4 स्केल का झटके लगे जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये झटके अभी न लगते तो फिर दोबारा कोई नौ स्केल का ही आना संभव था, वो आता भी तो उसका पावर छह हो रहा है, अंदर प्लेट जो है सेटिंग कर रहा है, इंडिया प्लेट और तिब्बतियन प्लेट क्या बोलते हैं वो सबको सेटिंग हो रहा है, उस बीच में ये झटके आ रहे हैं, ये आना अच्छा है कहते हैं, है ना। तो हम लोग भी जरा तसल्ली में बैठे हैं, आना अच्छा है तो आते रहे, कोई बात नहीं है, तो आदि हो गए। पहले तो मन से हिलता था तो भी आ गया भूकंप ऐसा लगता था, तब फिर समुद्र मंथन शुरू किया, खतरा टल गया ना, विषम समृत बता, तो फिर सोम निकला, चंद्रमा, वो भी समुद्र के अंदर ही था तो चंद्रमा निकला। भगवान शिव ने कहा कि अरे ये भी मुझे दे दो। बोले महाराज ये तो अच्छी चीज है, आपको कैसे दे। बोले बेटा वो जो जहर पिया है ना, कंठ में गर्मी है, पूरे शरीर आग से जहर से तप रहा है, तो ये जो सोम है मस्तक में धारण करेंगे तो ठंडक रहेगी, नहीं तो इसको पचाना हमारे लिए मुश्किल है बेटा, दे दो भाई। और यदि कदाचित हम इसको ये जहर को पचा नहीं पाए, फूड पॉइजन हो गया तो वॉमिटिंग करना पड़ेगा कि नहीं है, फिर वॉमिटिंग होगा, फूड पॉइजन हो गया तो पचेगा नहीं तो फूड पॉइजन होगा, फूड पॉइजन हो गया तो वॉमिटिंग करना पड़ेगा, फिर वो बाहर आएगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी। अरे महाराज तब तो धारण करो धारण करो, दे दिया। भगवान शिव ने उसको मस्तक में धारण कर लिया। वैद्य लोग कहते हो पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा, आओ वैद्य तो मारो डंडा, तेरी काम नहीं है यार, जा तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, किसके वैद्य की डॉक्टर के काम नहीं है, कहां कब, पांव गरम पेट नरम और सिर ठंडा रहे तो वैद्य के काम नहीं है, वैद्य आ भी गया तो मारो डंडा उसको, भगाओ, तो खाली हमारे पैसा लूटने के लिए आ रहा है, तेरी आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि हम पांव गरम पेट नरम सिर ठंडे वाले हैं। अब सोम कला धर्म उले, अब भगवान ने सिर में चंद्रमा धारण किया है तो सिर गरम रहेगा कि ठंडा रहेगा, हैं? ठंडा रहेगा तो अब वैद्य की क्या आवश्यकता है, फिर वो जहर क्या असर करेगा, सिर ठंडा है तो काम बन गया भाई। और हमारा हमारे तो हालत यह है कि सिर हमेशा गर्म रहता है इसलिए वैद्यों के डॉक्टरों के पीछे दौड़े रहते हैं, है? पेट नरम होना चाहिए वो कठिन होता है कब्जियत के चलते, सिर ठंडा होना चाहिए गर्म होता है व्यवहार जटिलता के चलते रागव द्वेष के चलते, हां तब से भगवान शिव का नाम पड़ा सोमकला। चंद्रमा सकल है, सकल कला से युक्त है, और जिस समय भगवान शिव ने जो चंद्रमा धारण की उस समय वो चंद्रमा दो कला से युक्त था। द्वितीय का चंद्रमा दो कला, पूर्ण कला नहीं, दो कला, इसलिए कला शब्द किया। सोम कलाधर मऊलऊ, और ठीक उसके साथ साथ ने दूसरा संबोधन कर दिया, कोमल घन कंधरे, कंधर माने कंठा, इसलिए व्यवहार में भी कंधा बोलते हो ना, कंधे में जो धारण हो वह कंधरा कंठा। कैसा था वो कंठ में जो धारण किया था, कोमल घन, घन माने बादल, कोमल माने नया, बरसने के लिए चौमासे में तैयार हुआ हुआ बादल, कोमल घन। अभी अभी मानसून के द्वारा अभी वर्षा, मानसून आया नहीं लेकिन आने की तैयारी में है, इसलिए उसको विशेषण दिया कोमल घन। समुद्र में से अभी अभी बादल जब उठकर आकाश में आए हैं, कैसे होते हैं तो काले काले बादल, है ना, कोमल घन। कंधरे उपमा है, कोमल बादलों के, नए बादलों के समान रंग वाला कालकूट, जिसको प्रसिद्ध भाषा में उनके लिए नीलकंठ शब्द प्रयोग हुआ, और उस बादल का विशेषण नील या कोमल काले, घन घन माने बादल, इसलिए किसी ने भजन गाया है ना, घन आए घन श्याम मन आए, हैं? घन आ गए लेकिन घनश्याम नहीं आए। हे कोमल घन कंदरे, सोम कला ये बुद्धि का प्रतीक है, कोमल घन कंदर ये विषयों का प्रतीक है, विषन विषय सेवन करो लेकिन बुद्धिपूर्ण।

விஷஸ்ய விஷமௌஷதம். ஆயுர்வேத மே வாக்கியம் ஆதா ஹை விஷஸ்ய விஷமௌஷதம். விஷ கோ நஷ்ட கர்னே கே லியே விஷ கா ஹீ பிரயோக் கர்னா படதா ஹை. தபி ஜாகர் வோ விஷ ஔஷதி கா காம் கரேகா. तो समझदारी होगी जब उसका जानकारी होगी तो बुद्धिपूर्वक सेवन करेंगे तो वह विष औषधि का काम करेगा. और राग और द्वेष पूर्वक आसक्ति पूर्वक विषय का सेवन करते हैं तो वही विषय विष के रूप में परिणत हो जाता है. इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर वाक्य लिख दिया है. मुझे प्रसंग में वो आ जाता है, याद में आ जाता है श्लोक, तो संगति लगाकर व्याख्या कर दिया करता हूं. विषस्य विषयाणां च दृश्यते महदंतरम. विष और विषय में क्या अंतर है? शंकराचार्य जी कहते हैं बड़ा जमीन आसमान का फर्क है. साधारण व्यक्ति विषय समझ नहीं पाएगा. विषय किसको कहते हैं? विष तो समझ रहा है, उसको विष कहेंगे जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति मर जाता है, प्राणी मर जाता है. लेकिन विषय की परिभाषा क्या है बोलो? इस माला का नाम विषय है, समझे कि नहीं? इसका नाम क्या है? विषय है. पीला सफेद हरा आंख का विषय है, सुगंध आ रहा है नाक का विषय है, ठंडा है स्पर्श का विषय है, कड़वा मीठा जिह्वा का विषय है. विषय तो है नहीं, तो इसका नाम विषय है. और विष तो दुकान में मिलेगा, विषय कहां मिलेगा? विषय तो जहां भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बोलो? विषय तो जहां भी मिल रहा है, मिल ही रहा है, मिल रहेगा. और विष तो कहीं ना कहीं दुकान दुकान में मिलेगा भाई. तो विषय सेवन से कोई मरता हुआ देखा है तुम लोगों ने? और विष सेवन से मरे हुए पत्र पत्रिका में भरता रहता, भरा हुआ रहता है. विषपान करके उसने जान दे दी, मर किया आदि आदि. और सुनते ही हम डर जाते हैं विष का नाम सुनते. तो शंकराचार्य जी ने शिष्यों से पूछा, अरे बेटा विष और विषय में क्या अंतर है? उसने कहा, महाराज विष सेवन करते ही मर जाता है, विषय जितना सेवन करे तो भी नहीं मरता है. यही ना बोलो? रोटी जितने खाओ कोई मरे? रोटी खाकर कोई मरा है? पकौड़ा खाकर कोई मरा है? रसपुरी खाकर कोई मरा है? अब रस का तो जमाना गया, बारिश गई. अब श्रीखंड पूरी खाओ. शंकराचार्य जी कहते, बेटा विष और विषय में बड़ा अंतर है. क्या अंतर है महाराज? उपभुक्त्वा विषमहंती. विष जो है सेवन करने पर ही जिह्वा और विष का जब संयोग होगा

0: व्यसन इंद्रिय और विष का संयोग होगा, तभी विष असर करता है, अपना प्रभाव छोड़ता है। लेकिन जब तक रसन इंद्रिय और विष का संयोग नहीं होगा तो विष असर नहीं करेगा। शरीर में किसी भाग में विष का प्रवेश होने पर भी वह विष रक्त के कणों के माध्यम से, प्रवाह के माध्यम से रसन इंद्रिय में पहुंचेगा, तभी उसका असर होगा। अन्यथा रसन इंद्रिय में न पहुंचे तो शरीर के किसी अंग तक ही वह विष सीमित रहे तो उतने से व्यक्ति मरता नहीं। इसलिए हमें समझाया जाता था, तुम लोग तो शहरी हो, बंबई वासी हो, हम तो पहाड़ी हैं, गांवड़े हैं, गांवड़िया हैं, समझे कि नहीं। तो समझाया जाता था बचपन में, तो सर्प बहुत होते हैं गांव में, जंगल में, घास में, घासों में, खेती में, किसान तो खेती करने वाला होता है, गांव में गाय के लिए घास काटने जाओ, है ना, खेती के लिए पानी लगाने जाओ, नलाई गुड़ाई करने जाओ। तो ये समझाया जाता था कि यदि सर्प ने काट लिया, सर्प डंश कर ली, तो तुरंत तुमको जहां पर सर्प ने काटा है उससे ठीक ऊपर जोर से कस के रस्सी बांधो, ले तुरंत ही, और कुछ नहीं। वो सिखाया जाता था, क्यों महाराज, ताकि वो सर्प का विष रक्त के माध्यम से और शरीर के और अंगों में न जाए, वहीं तक सीमित रह जाए, जिह्वा तक न जाए। तो फिर ये कहा जाता था, फिर कस के बांधने के बाद जहां उसने सर्प ने डंश मारी है, विष पड़ा हुआ हो, वहां पर ब्लेड से या किसी हथियार से चीरा लगा दो और निचड़ना शुरू करो, वो रक्त सब बह के चला जाएगा, तो रक्त के साथ विष भी निकल जाएगा। ये घरेलू नुस्खे हैं, ये देखो, कोई बड़ा भारी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि वो समझदारी होश और होशियारी वहां तत्काल प्रयोग करोगे, बस बांध दो। यहां अब सर्प विशेष करके या तो पांव में काटता है या फिर हाथ में काटेगा, या तो चलते चलते उसके शरीर में पांव पड़ेगा तो वो फट से काटेगा पांव में, या फिर घास काटते या कहीं करते तो वो पकड़ में आएगा तो फट से हाथ में डंक मारेगा, वो आके सिर में तो मारेगा नहीं, पेट में तो मारेगा नहीं। अब हाथ में यदि डंक मारा कहीं तो ऊपर बांध दो और ये चिरा लगा दो, रगत इधर का रक्त चला गया, जहर निकल गई, बाद में खोल दो, ठीक हो गया, रस्सी खोल दो, ब्लड सर्कुलर चालू। पांव में डंक मारा तो ऊपर घुटने के नीचे जोर से कसते हो रस्सी, ब्लड सर्कुलर बंद हो गया, और चिरा लगा दो, निकल गया। तो जिह्वा तक उस विष नहीं पहुंच पाएगा, तो व्यक्ति शरीर के अंगों में विष रहने पर भी वो मरेगा नहीं। तो शंकराचार्य कहते उपभुंत्वा विषम अंते, विष तो सेवन करने पर ही उसको नुकसान कर सकता है। विष का नाम सुनकर असर करेगा, बोलो, आंख से देखने पर असर करेगा? विष को आंख से यदि देख लिया तो क्या उसका असर करेगा? विष के बारे में सुन लिया असर करेगा? विष को छू लिया असर करेगा? बाहर छूने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रक्त के साथ मिलकर जिह्वा तक पहुंच गया तब असर करेगा। वो बाहर स्किन से छूने मात्र से तो उसका कोई प्रभाव नहीं। शंकराचार्य जी बोलते विषय तो विष से भी खतरा है इस अर्थ में, क्योंकि विषय के बारे में सुना की असर कर जाता है। विषय कितना खतरनाक है बोलो, विषय के बारे में तुमने सुना कि असर कर गया, देखा कि असर कर गया, छुआ कि असर कर गया, और छूने की भी बात छोड़ दो, देखने की भी बात छोड़ दो, सुना असर कर गया, और बैठे बैठे याद किया तो असर कर गया। लेव जी अनुभव किया कि नहीं तुम लोगों ने, हैं? बैठे बैठे याद किया तो असर कर जाएगा, हैं? रावण ने सीता के सौंदर्य के बारे में शूर्पणखा के मुख से केवल सुना, सीता का रूप देखा ही नहीं था वो, केवल सुना था उसने। शूर्पणखा ने जाकर कह दिया रावण को, क्या बताऊं भैया, एक औरत जंगल में आ रही है, आई कहां से आई ये पता नहीं, दो पुरुष उसको लेकर घूम रहे हैं, एक औरत है और दो पुरुष हैं, और उस औरत का सुंदरता, उस औरत की सौंदर्य इतने अद्भुत है, इतने अद्भुत है कि मैं खुद ही सम्मोहित हो गई। और उस समय मैंने विचार किया कि इतनी सुंदर औरत तो असुर राज रावण को ही शोभा देता है, अब ये जंगल में भटक रही है, क्यों ना उसको इस तरह से समझा के पटा के तुम्हारी भारिया बना दूं, तुम्हारे पास लाऊं। ये सोचकर हम उससे वार्ता करने के लिए, उसको पटाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करने लगे, वो जो दो पुरुष थे उसमें से एक छोटा वाला था, उसने ये हाल कर दिया, भैया कुछ भी हो तुम्हारे राजमहल में, तुम्हारे लंका में दुनिया के बढ़िया सा बढ़िया सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो स्त्री यदि तुम्हारे राजमहल में तुम्हारे साथ सिंहासन में न बैठे तो ये और सारा कस होना सब बेकार है। किसने कह दिया? शूर्पणखा ने कहा। रावण ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, सुन लिया, वो असर कर गया कि नहीं बोलो, रावण की मृत्यु का कारण क्या हुआ वो सुनना, जब तक नहीं सुना तब तक मृत्यु सामने नहीं आई, और सुना कि बस उसने प्रयत्न कर लिया, मैं जैसे जिस तरह से भी उस औरत को ला कर ही छोड़ूंगा, ऐसी सुंदर है तू, वो सारा षड्यंत्र किया, आखिर क्या हुआ, शूर्पणखा तो ये कह के गई, और अंत में मंदोदरी क्या कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहन को कुल रोवनिहारा। देव जी तो ये उदाहरण और इससे क्या सिद्ध हुआ, विषय विष से भी खतरनाक है। रावण जहर खाकर मर सकता है कि नहीं बोलो, हैं? बोलो जवाब दो, नहीं मर सकता, जहर खाकर रावण नहीं मर सकता, क्यों, नाभि में अमृत है, शास्त्र नहीं पढ़ी है, प्रसंग नहीं सुना है, जन्मजात नाभि में अमृत लेकर आया, और नाभि में अमृत रहते हुए रावण को मारने का कोई उपाय नहीं है, जहर खाकर भी नहीं मर सकता है, आग में कूदकर भी नहीं मर सकता है, लेकिन रावण मर गया कि नहीं, किससे मरा, विष से मरा कि विषय से मरा, शंकराचार्य जी ने समझा दिया बेटे को, शिष्य को, विषस्य विषयाणाम च दृश्यते, विवेक चूड़ामणि का श्लोक, विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतरम उपभुंक्त्वा विषम हन्ति विषया चक्षुषा प्ययम्। विषय को तो देखते ही असर कर जाएगा, विषय इतना खतरनाक है। और शंकराचार्य जी ने फिर दूसरा दृष्टांत दिया, वहां विष सेवन करके नष्ट होने वाला केवल विष का प्रभाव पड़ता है केवल अन्नमय कोष में। किसका प्रभाव पड़ेगा? विष का। कहां? सिर्फ अन्नमय कोष में पड़ेगा। विष का प्रभाव प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष में नहीं पड़ता, यानी सूक्ष्म शरीर में विष का प्रभाव असर नहीं पड़ता। विष पान करके मरने वाला व्यक्ति मर गया विष पान करके, वो स्वर्ग जाएगा तो विष का असर लेकर जाएगा कि नहीं, उसके साथ विष का प्रभाव जाएगा कि नहीं, है? जाएगा कि नहीं बोलो? नहीं जाएगा ना। नरक जाएगा तो विष का प्रभाव जाएगा कि नहीं, है? नहीं जाएगा, क्योंकि विष का संबंध अन्नमय कोष से है। अन्नमय कोष यही है, अन्नमय कोष आग लगा के डड़ा जला देंगे, खत्म हो गए विष का प्रभाव। विषय का जो चिंतन है वो सूक्ष्म शरीर में असर करता है। स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी विषय का जो चिंतन है वो जन्म जन्मांतर जाता है, जन्म जन्मांतर है, तब खतरनाक क्या है? विष से तो एक जन्म का नुकसान होगा और विषय से अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे। विषयाशक्तिपुर, इसीलिए तो गीता में और उपनिषदों में ये कहा गया है, योनिमन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। और गीता में क्या कहा? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ति कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये क्या है? ये विषय का असर है। जो जो विषय का तुम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हो, शरीर छोड़ने के बाद तत्त उसके स्मरण किए अनुरूप ही उसको दूसरा जन्म की प्राप्ति होती है। बस समझे कि नहीं? कई उदाहरण, राजा भरत विषय के चिंतन करते करते मरे, परिणाम क्या हुआ? यदि विष खाकर मरता तो राजा भरत को इतना नुकसान न होता, एक जन्म जाता जाता, लेकिन विषय चिंतन, हाय मैंने पाला, मैंने रक्षा की, मैंने बचाया, अब मैं मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद इसकी रक्षा कौन करेगा, इसका क्या होगा? ये क्या है? विषय चिंतन है कि नहीं बोलो? परिणाम क्या हुआ? मनुष्य योनि में जन्मा राजा पशु योनि में जाकर पैदा होना पड़ा कि नहीं? क्योंकि मरते समय पशु का चिंतन किया, पशु योनि में चला गया वो। ये देख लो तो खतरनाक क्या है? शंकराचार्य जी 1200 वर्षों से चिल्लाते रहे, हम जहां के वहीं हैं, हम फिर भी विषय के प्रति ही आ सकता है। विषय नहीं मिला तो बवाल खड़ा हो गया। पत्नी को कहा था आज पकौड़े बनाना, उसको फुर्सत नहीं हुई, नहीं बनाई, और पकौड़े की जगह उसने क्या बना दी, सूखी बाजरे की रोटी। बवाल शुरू कर दिया और तो बाजरे की रोटी में जो स्वाद आता वो भी गया है। बड़े प्रेम से खाता तो क्या स्वाद आती बाजरे की रोटी में, ज्वार की रोटी में। अब जो स्वाद था, जो रस था, वो रस भी सुखा दिया भाई, बवाल कर दिया।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. The next program is Shiva Kirtana. In this, you are about to listen Ananda Natana Prakasham song sung by Sri D.K. Jayaraman. Thank you. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

कल्पयामि, हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि, यम वायवात्मने धूपं कल्पयामि, रम वन्यात्मने दीपं कल्पयामि, वम अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि,

0: चिदेकरसम्पूर्ण श्रीशिवाय नमः। ॐ श्रीमहेश्वराय नमः। ॐ श्रीशिवकाम्यम्बासनाथाय चित्सभेश्वरमूर्तये नमो नमः।
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ुद्रैरादित्यैस्सयुग्भिर्बर्हिरासादद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज
1: होतायक्षदो जो न वीर्यज्ञे स होद्वार इन्द्रामवर्धयन्।

वेदता स्वप्ने जागृति वा यये सपुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।

భాత్యేతత్ సమస్తం జగత్ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. శంకరాచార్య జీ కహతే హై యే ఆత్మా హీ సభీ కో ప్రకాశిత్ కర్నే వాలా హై. आत्मा के प्रकाश से ही सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं. एक सामान्य नियम वेदांत की जो प्रक्रिया है उस पर संकेत करते हैं. हम जब भी ये कहते हैं कि मैं इस पदार्थ को जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि पदार्थ को आप जानते हैं. ज्ञान स्वरूप भगवान शिव ही इस पदार्थ को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि मैं से अभिन्न वो परमात्मा और परमात्मा से अभिन्न मैं. जीवात्मा इस अभिन्नता को नहीं जानता है, इसीलिए परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं ये मानता है, और इसीलिए जीवात्मा ये मानता है कि जगत के पदार्थों को देखने वाला जानने वाला मैं हूं. इस वाक्य में उसका अहंकार ही काम करता है, अभिमान ही काम करता है. इस वाक्य में उसकी ना समझ ही काम कर रही है. वेदांत जब आप कहते हैं या मैं कहता हूं या परमात्मा कहते हैं, वो पर्यायवाची है, समानार्थक है, एकार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं. परमात्मा इस जगत के पदार्थों को कैसे जानता है, या मैं इस जगत के पदार्थों को कैसे जानता हूं. परमात्मा को समझ में आवेगा तो फिर मैं अपने बारे में समझ पाऊंगा, और मैं अपने बारे में ठीक से समझूंगा तो फिर परमात्मा के बारे में भी समझ में आ जाएगा. और हम लोग यही कमजोरी कर जाते हैं कि न मैं अपने बारे में ठीक से समझ पाता हूं, न परमात्मा के बारे में ठीक से समझ पाते हैं. किसी बहन ने कहा था कल कि अड़चन क्या है, सब कुछ समझते हुए भी अड़चन कहां है, समस्या कहां है, अपरोक्ष क्यों नहीं होता है. तो उसका उत्तर यही था, समझते हैं और समझ अनुसार करते नहीं है, इसीलिए अड़चन है. अध्यास को हटाने के लिए सत्संग करते हैं, अध्यास को हटाने के लिए समझदारी बढ़ाना चाहते हैं, और सत्संग और समझदारी स्वाध्याय का मुख्य प्रयोजन ही है कि अध्यास को हटाया जाए. अध्यास क्या है ये भी हम समझते हैं कि अध्यास कैसे बनता है, और ये अध्यास कैसे छूटता है ये भी जानते हैं. ना समझदारी से अध्यास होता है और समझदारी से अध्यास की निवृत्ति होती है ये भी जानते हैं, और जानते हुए अध्यास को बचाने की कोशिश करते हैं, रक्षा करते हैं अध्यास को. हम ही उस अध्यास की रक्षा करते हैं, बचाना चाहते हैं. सो कैसे महाराज, कल शाम को भी ये चर्चा चल रही थी. ये अध्यास को हटाने के लिए जो हटाने के लिए कर्म करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं. सबसे बड़ी अध्यास यह है, हमने संकेत किया है. केवल आपकी बात नहीं कह रहा हूं, यह हमारे साथ भी यही समस्या है, है? केवल आपकी बात नहीं कह रहे, अध्यास को समझ भी रहे हैं. अध्यास ही सारे अनर्थ का कारण है ये बात भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, और सारे वेदांत का और सत्संग का प्रयोजन इसी अध्यास को हटाना है ये भी हम समझ रहे हैं. आप समझो नहीं समझो, हम तो समझ रहे हैं कम से कम, फिर भी हम ही खुद इस अध्यास को बचाए रखे हैं.
क्योंकि इस अन्नमय कोष आत्मानंद गिरी मैं हूं, ये मेरा अध्यास है कि नहीं? मेरा अध्यास क्या है? ये अन्नमय कोष, पंचभूतात्मक अन्नमय कोष शरीर, यही मैं हूं, ये मेरा अपना अध्यास है। और मैं समझदारी होने पर भी इस अध्यास को स्वयं रक्षा करता फिर रहा हूं, मैं ही बचाता फिर रहा हूं। क्यों? थोड़े से कपड़े में यदि गंदा हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे, ये चिंता मुझे पहले सताने लगती है। और ठीक से मत्थे में विभूति नहीं लगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, आज स्वामी जी ने विभूति त्रिपुंड क्यों नहीं लगाया, ये चिंता सताने लगती है। तो रोज लगाते थे त्रिपुंड, आज त्रिपुंड क्यों नहीं लगाया, लोग क्या कहेंगे। अब त्रिपुंड कोई मेरे से कोई संबंध थोड़ी है, त्रिपुंड का संबंध स्थूल शरीर अन्नमय कोष से है। और उस अन्नमय कोष में लगा हुआ जो त्रिपुंड है, मैं मानता हूं कि मुझे लगा हुआ है, मैं लगा रहा हूं। और एक दिन ना लगे तो लोग क्या कहेंगे, ये देख लो। और एक दिन ठीक से कपड़ा यदि ठीक से नहीं लगाया तो लोग क्या कहेंगे, भाई कपड़े भी ठीक से पहनना होगा। सुबह उठते ही डर लगता है, डर इस बात की कि कोई नंगा ना देख ले है। मैं ही बचा रहा हूं अध्यास को, शरीर की अध्यास, कपड़ों की अध्यास, इनके साथ मैं को अपने संबंध जोड़ रहा हूं। और यदि ठीक से बटन यदि नीचे ऊपर हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कपड़ों की अध्यास ऐसी है कि शरीर के अध्यास तो परे की बात छोड़ दो, हम तो इतनी दूर कपड़ों के अध्यास पर ही मरे जा रहे हैं, इसी की रक्षा करने लग रहे हैं। रोज साफ धुले हुए कपड़े होने चाहिए, यदि एक दिन थोड़ा गंदा कपड़ा हो गया, एक दिन धोने के लिए समय नहीं मिला या कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन प्रेस नहीं हुआ कपड़े में तो लोग क्या कहेंगे। अध्यास, और इन्हीं अध्यासों की हम व्यवहारिक सत्ता में सारा समय प्रयत्न इन्हीं अध्यास की रक्षा करने में लगा रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही है कि अरे कपड़ा गंदा हो गया तो होने दो, इस कपड़े से मेरा क्या संबंध है। अरे भाई कपड़े के बटन नीचे ऊपर हो गया तो होने दो, उससे मेरा क्या संबंध है। अरे शरीर में कपड़ा नहीं है तो नहीं होने दो, कपड़ा सब निकलता है तो निकल जाने दो, नंगा होता है तो कपड़ा, शरीर नंगा होता है, मैं थोड़ी नंगा होता हूं। हिम्मत नहीं हो रहा है, हो रहा है हिम्मत, हो सकता है आपकी हिम्मत होगी नहीं होगी। हाँ लोग क्या कहेंगे, मीरा ने हिम्मत किया, मारा झटका, निकल गई, अध्यास टूट गया। खानदान की बहू हूं, हमारा तो यह अध्यास है, और वही अध्यास हमें बांधे रखती है। समझते हुए कि इस अध्यास से निकलना है, समझते हुए भी यही अध्यास बंधन का कारण है, यही अध्यास दुख का कारण है, यही अध्यास विक्षेप और अशांति का कारण है, ये जानते हुए भी हिम्मत नहीं करते हैं। और मेरा हिम्मत कर गई है। हाँ, खानदान की बहू होने से क्या होता है, मुझे इससे क्या, यही तो मेरे बंधन का कारण है। मार गई लात और निकल गई, हिम्मत कर गई वो। लोग कहे मेरा भैरी बावरी, लोगों ने तो कहा है, मीरा ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, मीरा ने ये नहीं सोचा है। तो अध्यास टूटा, खानदान के अध्यास जो था वो टूट गया, देह का जो अध्यास था वो टूट गया। हमारा तो ये अध्यास है कि ठीक समय पर यदि दवा न खाएं, एक दिन यदि दवाई की डोज छूट गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा भाई, है? क्या होगा, आकाश तो गिरेगा नहीं, गिरेगा। तुम यदि एक टाइम एक समय दवा की डोज न खाए तो आकाश गिर पड़ेगा, आकाश तो तुम मर जाओगे तो भी नहीं गिरेगा। आकाश तो ऐसा चीज है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि ये सारी आकाश को हम ही संभाल रहे हैं,
क्योंकि हम दवाई खा रहे हैं और जी रहे हैं और आकाश को हम ही धान रहे हैं, संभाल रहे हैं, और यदि हम मर गए तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ खत्म, तुम्हारा अध्यास खत्म होगा, तुम्हारी भ्रांति खत्म हो जाएगी। और क्या खत्म होगा भाई? तो घर से निकल नहीं पाते, निकलेंगे तो कहां जाएंगे? एक दिन भोजन नहीं छोड़ सकते, भोजन छोड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ये जो अध्यास हम बचाए रख रहे हैं, इसी की रक्षा करते हैं, जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं, और जो जान रहे हैं कि जो हमें दुख दे रहा है, सत्संग के माध्यम से जान भी गए हैं कि यही हमें दुख दे रहा है, और सत्संग के माध्यम से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इससे संबंध विच्छेद करना ही तुम्हारे शांति का कारण है, सुख और शांति का हेतु है। सत्संग से भी सिद्ध हो गया, युक्ति से भी सिद्ध हो गया है। जब भी इससे हमने संबंध तोड़ा है, चाहे प्राकृतिक ही सही, हम बड़े सुखी, बड़े आनंदित हुए हैं। जागृत की संबंध हमने छोड़ दी है तो हम बड़े जागृत की समस्या से हम मुक्त हो चुके हैं। स्वप्न के संबंध छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य छोड़ दिया है तो बहुत झंझटों से हम मुक्त हो गए। जागृत प्रपंच का स्वप्न में कोई मतलब नहीं है, स्वप्न प्रपंच का सुषुप्ति में कोई मतलब नहीं है। सुषुप्ति में आप स्वप्न और जागृत प्रपंच दोनों से मुक्त हो गए। क्या आनंद, सुखम अहम अस्वाप्सम, जागते ही बड़े गर्व से सबको सुनते हुए घोषणा करते हैं कि आज क्या आनंद में सोया। कैसे सोए तुम आनंद में? उसका कारण क्या है? क्योंकि शरीर के साथ, देह गेह के साथ, शरीर के साथ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन इंद्रिय आदि विषयों आदियों से संबंध का विच्छेद हो जाना ही वह तुम्हें सुख से सोने का कारण बन गया है। लेकिन वहां से दुर्भाग्य की बात है कि निकलने का कारण लेकर गए थे, वही तुम्हें फिर जगा देती है। अविद्या को निवृत्त करके नहीं गए थे, इसलिए उस अविद्या के चलते फिर जगना पड़ता है। फिर जगते हैं, फिर सारे पदार्थों से तादात्म अध्यास हो जाता है, फिर वही सारे समस्याओं से जूझते रहते हैं। और जब प्राकृत ही सही ये संबंध टूट जाता है तो बड़ा आनंद आता है। तो वेदांत का ये कहना है, ये तो प्रकृति ने व्यवस्था मिला दी है तुम्हें ये अभ्यास करने के लिए कि जिसके साथ तुम तादात्म्य जोड़ रहे हो उसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है। ये समझाने के लिए प्रकृति ने यह व्यवस्था मिलाई है कि कभी जागृत में आ जाओ, कभी तुम सुषुप्ति में चले जाओ, ये संभव है ये बताने के लिए। लेकिन ये जो प्रकृति के द्वारा हुआ है ये संबंध विच्छेद, वह प्राकृत हुआ है। तुम अपने विचार से ये विच्छेद कर पाओ तो फिर दोबारा ये समस्या तुम्हारे सामने नहीं आएगी। तो हम हिम्मत नहीं कर पाते, रात को सोते समय भी सो तो जाते हैं और डरते हुए सोते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सुबह सोते ही रह जाएं। और 7:30 बजे प्रेमपुरी आश्रम ना पहुंचे तो लो जी यही तो अध्यास है। नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, क्या आकाश गिर जाएगा? जिस दिन नहीं पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे तो नहीं पहुंच गए, आकाश के गिर जाएगा। बोले नहीं मारा, सत्संग छूट जाएगा। अरे छूट जाएगा तो छूट जाएगा, क्या बिगड़ेगा तुम्हारे स्वरूप में है? तुम्हारे स्वरूप में सत्संग छूट जाएगा तो क्या बिगड़ेगा? लेकिन चिंता है कहीं सत्संग छूट न जाए, बहुत कुछ अनर्थ न हो जाए। अरे तुम्हारे स्वरूप में कुछ अनर्थ होने वाला नहीं है, तुम्हारा शरीर इतना, तुम्हारा स्वरूप इतना कमजोर नहीं है। तुम्हारा स्वरूप बता रहा हूं, तुम्हारा स्वरूप इतना कमजोर नहीं है कि एक दिन के सत्संग छूट के ही वो खत्म अनर्थ हो जाए। अरे भाई ये तो सब अध्यास तोड़ने की बात है, तुम्हारा स्वरूप से तो कोई संबंध ही नहीं है। इतनी समझ, निश्चिंत हो जाओ। जग गए तो आ जाना, नहीं जगे तो नहीं आना। पक गया तो खा लेना, नहीं पके तो नहीं खाना। अरे नहीं पका तो क्या होगा? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे खाते हुए कोई जी रहा है क्या?
जितने भी मरे हैं ना वो खाते हुए ही मरे हैं, बिना खाए कोई नहीं मर रहा है। और अब भी ऐसे करेंगे, खाते हुए ही मरेंगे। अब मरते समय कितनी भोजन रसोई में पड़ा रहेगा, रसोईया बनाता रह जाएगा और बना हुआ भोजन भी पड़ा रहेगा। और शायद कहेंगे मम्मी थोड़ा सा खा लो, पापा थोड़ा खा लो, और वह रह जाएगा वहीं सिराने में रहेगा, टेबल में रहेगा। न खाने से नहीं मर रहा है, जबकि मरता ही है खाने से, क्योंकि मैं भोक्ता हूं जो कह रहा है वही अध्यास ही मैं मरने वाला हो जाता है, क्योंकि भोक्ता ही मरता है। आत्मा तो अभोक्ता है तो क्या मरेगा भाई? आत्मा अभोक्ता है, अकर्ता है तो क्या मरेगा? कर्ता भोक्ता ही तो मरता है, और उसी को हम सही मान रहे हैं। यही भ्रांति तोड़ना बहुत जरूरी है। कैसे ये सारे जगत का पदार्थ का भान होता है उसकी प्रक्रिया यहां बता रहे हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थितमः दीप प्रवाह भास्वरम्।

0: शांतमनुभात एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। दृष्टांत को समझने से पहले दृष्टांत को समझना जरूरी है, इसलिए शंकराचार्य जी हमेशा दृष्टांत ही देते हैं। हर बात को समझाने के लिए कोई न कोई दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत का मतलब होता है कि जो तुमने अनुभव किया है वो दृष्टांत सिद्धांत, देखे हुए सिद्धांत को ही दृष्टांत के रूप में तुम्हें समझाया जा रहा है। दृष्ट, दृष्ट शब्द का अर्थ होता है देखा हुआ, अनुभव किया हुआ वस्तु को दृष्ट बोलते हैं, न दिखा हुआ अनुभव में न आए हुए वस्तु को अदृष्ट बोलते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष दृष्ट अदृष्ट, अनुभव में क्या आ रहा है, नाना छिद्र घटो दर स्थित महा दीप प्रभास्वरम। हम लोग अक्सर ये उसका प्रतीक है। हम दिवाली तो हर साल मनाते हैं और दिवाली में हम घड़ा खरीद के लाते हैं दीपावली के लिए, घड़ा खरीद के लाते हैं मिट्टी का, और वो घड़ा छिद्र छिद्र वाला होगा, अनेक छिद्रों वाला होगा। और किस लिए लाते हैं, तो आजकल तो बत्ती की रक्षा करने के लिए अनेक वस्तुएं, अनेक ऐसे वस्तुओं का निर्माण हो गया है। पहले के जमाने में ये सब थे नहीं, ये सब उपाय नहीं थे, तो अखंड बत्ती बालने के लिए, जलाने के लिए लोग ऐसे छिद्रयुक्त घड़ों का प्रयोग किया करते थे। नाना छिद्र घट, अनेक छिद्र से युक्त हुआ हुआ घड़ा, यानी दिवाली के समय में बत्ती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए प्रयोग करने वाला घड़ा।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sakya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Nayanmar ki kahani, jinka naam Shakyar hai. Bhakti marg mein aham ka sampurna tyag karke भगवान की शरण में जाना अनिवार्य है। भक्ति भावना और संवेदना पर आधारित है, अतः ज्ञानवाद से परे है। भक्ति में बस इस बात का ज्ञान चाहिए कि स्वामी कौन है और मैं कौन हूँ, मेरा और उनका क्या संबंध है। ज्ञान मार्ग में अहम को आधार मानकर ये वस्तु को जानते को जानने का उपक्रम करना होता है। तिरुचंगमगई नामक गाँव में शाक्यर का जन्म हुआ। वह प्राप्त करने पर निकट स्थिति कांचीपुरम जाकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने सभी मार्गों का अनुसरण किया। बाद में वे शाक्य वंश के महात्मा बौद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। निरंतर साधना के बाद भी उनकी मानसिक अशांति दूर न हुई। शनै शनै उन्हें ज्ञान हुआ कि कर्ता कर्म, कर्म का फल और फल प्रदाता, इन चारों को केवल शैव धर्म स्वीकार करता है। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि चाहे किसी स्थिति में रहें, चाहे जैसी वेशभूषा रहे, शंकर शिव के पद कमलों पर आस्था रखना ही सच्चा धर्म है। अपने बौद्ध भिक्षु के वेश का त्याग किए बिना वे मन से शिव भक्त बन गए। एक दिन राह चलते आत्मविस्मृति की स्थिति में उन्होंने एक कंकड़ उठाया और उसे शंकर के निराकार रूप यानी कि शिवलिंग पर फेंका। फेंकते समय मन में अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। उन्हें यही ईश्वर इच्छा प्रतीत हुई और प्रतिदिन यही काम वे करने लगे। एक दिन वे कंकड़ मारना भूल गए और भोजन खाने बैठ गए। एकाएक ध्यान आया तो भोजन छोड़कर शिवलिंग की ओर दौड़े और कंकड़ मारा। जनश्रुति है कि शिवलिंग से स्वयं शिव प्रकट हुए और उन्होंने शाक्य को अपना लिया। प्रारंभ में शाक्य नायनार बौद्ध थे। ज्ञान और तर्क पर आधारित बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले शाक्य भक्ति मार्ग में लग गए। शिवलिंग पर कंकड़ मारने पर उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। कारण तो वे न जान पाए, परंतु असीम निष्ठा से भक्ति के अतिरिक्त कुछ और बिना सोचे वे प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर कंकड़ मारने लगे। उन्हें लगा कि वह ईश्वर प्रेरणा थी कि उन्होंने शिवलिंग पर कंकड़ मारा। साधारण प्राणी के लिए जो कंकड़ है, शिव के लिए वही पुष्प है। अन्य लोग इसका क्या अर्थ लगाते हैं, इसे किस रूप में लेते हैं, उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। उनकी वेशभूषा बौद्धों की थी, पर शिव के ऐसे भक्त बन गए कि आत्मबोध खोकर शिव की कृपा के पात्र बन गए। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
4: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
5: भूगर्भविदों का एक मान्यता है कि वो भूकंप जितने रिएक्टर स्केल में आ गया है, आना चाहिए था उतने में नहीं आया, वो 9 से कम का तो आना ही नहीं चाहिए था। भूगर्भविद कहते हैं कैलकुलेशन करके 9 से कम का नहीं आना चाहिए था, 9 से ऊपर का ही आना चाहिए था, लेकिन 8 स्केल का आ गया, गनीमत है आ गया। बाकी वो स्केल 8 और 9 का जो कैलकुलेशन है वो पूरा करना है, तो बोले उस 9 स्केल को पूरा करने के लिए दिन में 5-6 झटके लग रहे हैं, ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। अब ये प्रतिदिन 2 महीना हो चुका है, अभी भी झटके लग रहे हैं, 4 स्केल का झटके लगे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये झटके अभी न लगते तो फिर दोबारा कोई नौ स्केल का ही आना संभव था, वो आता भी तो उसका पावर छह हो रहा है, अंदर प्लेट जो है सेटिंग कर रहा है, इंडिया प्लेट और तिब्बतियन प्लेट क्या बोलते हैं वो सबको सेटिंग हो रहा है, उस बीच में ये झटके आ रहे हैं, ये आना अच्छा है कहते हैं, है ना। तो हम लोग भी जरा तसल्ली में बैठे हैं, आना अच्छा है तो आते रहे, कोई बात नहीं है, तो आदि हो गए। पहले तो मन से हिलता था तो भी आ गया भूकंप ऐसा लगता था, तब फिर समुद्र मंथन शुरू किया, खतरा टल गया ना, विषम समृत बता, तो फिर सोम निकला, चंद्रमा, वो भी समुद्र के अंदर ही था तो चंद्रमा निकला। भगवान शिव ने कहा कि अरे ये भी मुझे दे दो। बोले महाराज ये तो अच्छी चीज है, आपको कैसे दे। बोले बेटा वो जो जहर पिया है ना, कंठ में गर्मी है, पूरे शरीर आग से जहर से तप रहा है, तो ये जो सोम है मस्तक में धारण करेंगे तो ठंडक रहेगी, नहीं तो इसको पचाना हमारे लिए मुश्किल है बेटा, दे दो भाई। और यदि कदाचित हम इसको ये जहर को पचा नहीं पाए, फूड पॉइजन हो गया तो वॉमिटिंग करना पड़ेगा कि नहीं है, फिर वॉमिटिंग होगा, फूड पॉइजन हो गया तो पचेगा नहीं तो फूड पॉइजन होगा, फूड पॉइजन हो गया तो वॉमिटिंग करना पड़ेगा, फिर वो बाहर आएगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी। अरे महाराज तब तो धारण करो धारण करो, दे दिया। भगवान शिव ने उसको मस्तक में धारण कर लिया। वैद्य लोग कहते हो पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा, आओ वैद्य तो मारो ठंडा, तेरी काम नहीं है यार, जा तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, किसके वैद्य की डॉक्टर के काम नहीं है, कहां कब, पांव गरम पेट नरम और सिर ठंडा रहे तो वैद्य के काम नहीं है, वैद्य आ भी गया तो मारो डंडा उसको, भगाओ, तो खाली हमारे पैसा लूटने के लिए आ रहा है, तेरी आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि हम पांव गरम पेट नरम सिर ठंडे वाले हैं। अब सोम कला धर्मौले, अब भगवान ने सिर में चंद्रमा धारण किया है तो सिर गरम रहेगा कि ठंडा रहेगा, हैं? ठंडा रहेगा तो अब वैद्य की क्या आवश्यकता है, फिर वो जहर क्या असर करेगा, सिर ठंडा है तो काम बन गया भाई। और हमारा हमारे तो हालत यह है कि सिर हमेशा गर्म रहता है इसलिए वैद्यों के डॉक्टरों के पीछे दौड़े रहते हैं, है? पेट नरम होना चाहिए, वो कठिन होता है कब्जियत के चलते, सिर ठंडा होना चाहिए, गर्म होता है व्यवहार जटिलता के चलते, रागव द्वेष के चलते, हां। तब से भगवान शिव का नाम पड़ा सोमकला। चंद्रमा सकल है, सकल कला से युक्त है, और जिस समय भगवान शिव ने जो चंद्रमा धारण की उस समय वो चंद्रमा दो कला से युक्त था। द्वितीय का चंद्रमा दो कला, पूर्ण कला नहीं, दो कला, इसलिए कला शब्द किया। सोम कलाधर मऊलऊ, और ठीक उसके साथ साथ ने दूसरा संबोधन कर दिया, कोमल घन कंधरे, कंधर माने कंठा, इसलिए व्यवहार में भी कंधा बोलते हो ना, कंधे में जो धारण हो वह कंधरा कंठा। कैसा था वो कंठ में जो धारण किया था, कोमल घन, घन माने बादल, कोमल माने नया, बरसने के लिए चौमासे में तैयार हुआ हुआ बादल, कोमल घन। अभी अभी मानसून के द्वारा अभी वर्षा, मानसून आया नहीं लेकिन आने की तैयारी में है, इसलिए उसको विशेषण दिया कोमल घन। समुद्र में से अभी अभी बादल जब उठकर आकाश में आए हैं, कैसे होते हैं तो काले काले बादल है ना, कोमल घन। कंधरे उपमा है, कोमल बादलों के, नए बादलों के समान रंग वाला कालकूट, जिसको प्रसिद्ध भाषा में उनके लिए नीलकंठ शब्द प्रयोग हुआ, और उस बादल का विशेषण नील या कोमल काले, घन घन माने बादल, इसलिए किसी ने भजन गाया है ना, घन आए घन श्याम मन आए, घन आ गए लेकिन घनश्याम नहीं आए। हे कोमल घन कंदरे, सोम कला ये बुद्धि का प्रतीक है, कोमल घन कंदर ये विषयों का प्रतीक है, विषन विषय सेवन करो लेकिन बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक विषय का सेवन करो, विचार पूर्वक यदि विषय का सेवन करते हो तो वह विषय सेवन करने वाले को नुकसान नहीं करता, समझे ना, तो विष हालांकि नुकसान करने वाली चीज है लेकिन वही विष भी विचार पूर्वक यदि सेवन करते हो तो नुकसान नहीं कर सकता है। विषस्य विषम औषधम, आयुर्वेद में ये वाक्य आता है, विषस्य विषम औषधम, विष को नष्ट करने के लिए विष का ही प्रयोग करना पड़ता है तभी जाकर वो विष औषधि का काम करेगा। तो समझदारी होगी जब उसका जानकारी होगी तो बुद्धिपूर्वक सेवन करेंगे तो वह विष औषधि का काम करेगा, और राग और द्वेष पूर्वक आसक्ति पूर्वक विषय का सेवन करते हैं तो वही विषय विष के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर वाक्य लिख दिया है, मुझे प्रसंग में वो आ जाता है, याद में आ जाता है श्लोक, संगति लगाकर व्याख्या कर दिया करता हूं। विशस्य विषयाणांच दृश्यते महदंतरम, विष और विषय में क्या अंतर है। शंकराचार्य जी कहते हैं बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। साधारण व्यक्ति विषय समझ नहीं पाएगा। विषय किसको कहते हैं? विष तो समझ रहा है, उसको विष कहेंगे जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति मर जाता है, प्राणी मर जाता है। लेकिन विषय की परिभाषा क्या है बोलो? इस माला का नाम विषय है, समझे कि नहीं? इसका नाम क्या है? विषय है। पीला, सफेद, हरा आपका विषय है। सुगंध आ रहा है, नाक का विषय है। ठंडा है, स्पर्श का विषय है। कड़वा, मीठा, जिह्वा का विषय है। तो विषय तो है नहीं, तो इसका नाम विषय है। और विष तो दुकान में मिलेगा, विषय कहां मिलेगा? विषय तो जहां भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बोलो? विषय तो जहां भी मिल रहा है, मिल ही रहा है, मिलेगा। और विष तो कहीं ना कहीं दुकान दुकान में मिलेगा भाई। तो विषय सेवन से कोई मरता हुआ देखा है तुम लोगों ने? और विष सेवन से मरे हुए पत्र पत्रिका में भरता रहता, भरा हुआ रहता है। विषपान करके उसने जान दे दी, मर किया आदि आदि। और सुनते ही हम डर जाते हैं विष का नाम सुनते। तो शंकराचार्य जी ने शिष्यों से पूछा, अरे बेटा विष और विषय में क्या अंतर है? उसने कहा, महाराज विष सेवन करते ही मर जाता है, विषय जितना सेवन करे तो भी नहीं मरता है। यही ना बोलो? रोटी जितने खाओ कोई मरे? रोटी खाकर कोई मरा है? पकौड़ा खाकर कोई मरा है? रसपुरी खाकर कोई मरा है? अब रस का तो जमाना गया, बारिश गई, अब श्रीखंड पूरी खाओ। शंकराचार्य जी कहते, बेटा विष और विषय में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है महाराज? उपभुक्त्वा विषमहन्ति, विष जो है सेवन करने पर ही जिह्वा और विष का जब संयोग होगा, रसन इंद्रिय और विष का संयोग होगा, तभी विष असर करता है, अपना प्रभाव छोड़ता है। लेकिन जब तक रसन इंद्रिय और विष का संयोग नहीं होगा तो विष असर नहीं करेगा। शरीर में किसी भाग में विष का प्रवेश होने पर भी वह विष रक्त के कणों के माध्यम से, प्रवाह के माध्यम से रसन इंद्रिय में पहुंचेगा, तभी उसका असर होगा। अन्यथा रसन इंद्रिय में न पहुंचे तो शरीर के किसी अंग तक ही वो विष सीमित रहे तो उतने से व्यक्ति मरता नहीं। इसलिए हमें समझाया जाता था, तुम लोग तो शहरी हो, बंबई वासी हो, हम तो पहाड़ी हैं, गांवड़े हैं, गांवड़िया हैं, समझे कि नहीं? तो समझाया जाता था बचपन में, तो सर्प बहुत होते हैं गांव में, जंगल में, घास में, घासों में, खेती में, किसान तो खेती करने वाला होता है, गांव में गाय के लिए घास काटने जाओ, है ना, खेती के लिए पानी लगाने जाओ, नलाई गुड़ाई करने जाओ, तो ये समझाया जाता था कि यदि सर्प ने काट लिया, सर्प डंश कर ली, तो तुरंत तुमको जहां पर सर्प ने काटा है उससे ठीक ऊपर जोर से कस के रस्सी बांधो, तुरंत ही, और कुछ नहीं, वो सिखाया जाता था। क्यों महाराज? ताकि वो सर्प का विष रक्त के माध्यम से और शरीर के और अंगों में न जाए, वहीं तक सीमित रह जाए, जिह्वा तक न जाए। तो फिर ये कहा जाता था, फिर कस के बांधने के बाद जहां उसने सर्प ने डंश मारी है, विष पड़ा हुआ हो, वहां पर ब्लेड से या किसी हथियार से चीरा लगा दो और निचड़ना शुरू करो, वो रक्त सब बह के चला जाएगा, तो रक्त के साथ विष भी निकल जाएगा। ये घरेलू नुस्खे हैं, ये देखो, कोई बड़ा भारी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थी वो समझदारी, होश और होशियारी वहां तत्काल प्रयोग करोगे, बस बांध दो यहां। अब सर्प विशेष करके या तो पांव में काटता है या फिर हाथ में काटेगा, या तो चलते चलते उसके शरीर में पांव पड़ेगा तो वो फट से काटेगा पांव में, या फिर घास काटते या कहीं करते करते वो पकड़ में आएगा तो फट से हाथ में डंक मारेगा, वो आके सिर में तो मारेगा नहीं, पेट में तो मारेगा नहीं। अब हाथ में यदि डंक मारा कहीं तो ऊपर बांध दो और ये चिरा लगा दो, रगत इधर का रक्त चला गया, जहर निकल गई, बाद में खोल दो, ठीक हो गया, रस्सी खोल दो, ब्लड सर्कुलर चालू, पांव में डंक मारा तो ऊपर घुटने के नीचे जोर से कसते हो रस्सी, ब्लड सर्कुलर बंद हो गया, और चीरा लगा दो निकल गया, तो जिह्वा तक उस विष नहीं पहुंच पाएगा, तो व्यक्ति शरीर के अंगों में विष रहने पर भी वो मरेगा नहीं।

विष को छू लिया असर करेगा, बाहर छूने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रक्त के साथ मिलकर जुबा तक पहुंच गया तब असर करेगा, वो बाहर स्किन से छूने मात्र से तो उसका कोई प्रभाव नहीं। शंकराचार्य जी बोलते विषय तो विष से भी खतरा है इस अर्थ में, क्योंकि विषय के बारे में सुना की असर कर जाता है। विषय कितना खतरनाक है बोलो, विषय के बारे में तुमने सुना की असर कर गया, देखा की असर कर गया, छुआ की असर कर गया और छूने की भी बात छोड़ दो, देखने की भी बात छोड़ दो, सुना असर कर गया और बैठे बैठे याद किया तो असर कर गया। ले जी अनुभव किया कि नहीं तुम लोगों ने, हैं? बैठे बैठे याद किया तो असर कर जाएगा, हैं? रावण ने सीता के सौंदर्य के बारे में शूर्पणखा के मुख से केवल सुना, सीता का रूप देखा ही नहीं था वो, केवल सुना था उसने। शूर्पणखा ने जाकर कह दिया रावण को, क्या बताऊं भैया, एक औरत जंगल में आ रही है, आई कहां से आई ये पता नहीं, दो पुरुष उसको लेकर घूम रहे हैं, एक औरत है और दो पुरुष हैं, और उस औरत का सुंदरता, उस औरत की सौंदर्य इतने अद्भुत है, इतने अद्भुत है कि मैं खुद ही सम्मोहित हो गई। और उस समय मैंने विचार किया कि इतनी सुंदर औरत तो असुर राज रावण को ही शोभा देता है, अब ये जंगल में भटक रही है, क्यों ना उसको इस तरह से समझा के पटा के तुम्हारी भारिया बना दूं, तुम्हारे पास लाऊं। ये सोचकर हम उससे वार्ता करने के लिए, उसको पटाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करने लगे, वो जो दो पुरुष थे उसमें से एक छोटा वाला था, उसने यह हाल कर दिया, भैया कुछ भी हो तुम्हारे राजमहल में, तुम्हारे लंका में दुनिया के बढ़िया सा बढ़िया सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो स्त्री यदि तुम्हारे राजमहल में तुम्हारे साथ सिंहासन में न बैठे तो ये और सारा कस होना सब बेकार है। किसने कह दिया? शूर्पणखा ने कहा। रावण ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, सुन लिया, अब असर कर गया कि नहीं बोलो। रावण की मृत्यु का कारण क्या हुआ वो सुनना, जब तक नहीं सुना तब तक मृत्यु सामने नहीं आई, और सुना कि बस उसने प्रयत्न कर लिया, मैं जैसे जिस तरह से भी उस औरत को ला कर ही छोड़ूंगा, ऐसी सुंदर है तू। वो सारा षड्यंत्र के आखिर क्या हुआ, शूर्पणखा तो ये कह के गई, और अंत में मंदोदरी क्या कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहन को कुल रोवनिहारा। देव जी तो ये उदाहरण और इससे क्या सिद्ध हुआ, विषय विष से भी खतरनाक है। रावण जहर खाकर मर सकता है कि नहीं बोलो, हैं? बोलो जवाब दो, नहीं मर सकता, जहर खाकर रावण नहीं मर सकता, क्यों? नाभि में अमृत है।

0: शास्त्र नहीं पढ़िए, प्रसंग नहीं सुना है। जन्मजात नाभि में अमृत लेकर आया और नाभि में अमृत रहते हुए रावण को मारने का कोई उपाय नहीं है। जहर खाकर भी नहीं मर सकता है, आग में कूदकर भी नहीं मर सकता है। लेकिन रावण मर गया कि नहीं? किससे मरा? विष से मरा कि विषय से मरा? शंकराचार्य जी ने समझा दिया बेटे को, शिष्य को। विषस्य विषयाणाम च दृश्यते, विवेक चूड़ामणि का श्लोक। विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतरम उपभुंक्त्वा विषम हन्ति विषया चक्षुषा प्ययम्। विषय को तो देखते ही असर कर जाएगा, विषय न खतरनाक है। और शंकराचार्य जी ने फिर दूसरा दृष्टांत दिया, वहां विष सेवन करके नष्ट होने वाला केवल विष का प्रभाव पड़ता है केवल अन्नमय कोष में। किसका प्रभाव पड़ेगा? विष का। कहां? सिर्फ अन्नमय कोष में पड़ेगा। विष का प्रभाव प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष में नहीं पड़ता, यानी सूक्ष्म शरीर में विष का प्रभाव असर नहीं पड़ता। विष पान करके मरने वाला व्यक्ति मर गया विष पान करके, वो स्वर्ग जाएगा तो विष का असर लेकर जाएगा कि नहीं? उसके साथ विष का प्रभाव जाएगा कि नहीं? है? जाएगा कि नहीं बोलो? नहीं जाएगा ना? नरक जाएगा तो विष का प्रभाव जाएगा कि नहीं? है? नहीं जाएगा, क्योंकि विष का संबंध अन्नमय कोष से है। अन्नमय कोष यही है, अन्नमय कोष आग लगा के जड़ा जला देंगे, खत्म हो गए विष का प्रभाव। तो विषय का जो चिंतन है वह सूक्ष्म शरीर में असर करता है। स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी विषय का जो चिंतन है वो जन्म जन्मांतर जाता है, जन्म जन्मांतर है, तब खतरनाक क्या है? विष से तो एक जन्म का नुकसान होगा और विषय से अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे। विषयाशक्तिपुर, इसीलिए तो गीता में और उपनिषदों में ये कहा गया है, यो निमन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। और गीता में क्या कहा? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ति कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये क्या है? ये विषय का असर है। जो जो विषय का तुम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हो, शरीर छोड़ने के बाद तत्त उसके स्मरण किए अनुरूप ही उसको दूसरा जन्म की प्राप्ति होती है। बस समझे कि नहीं? कई उदाहरण, राजा भरत विषय का चिंतन करते करते मरे, परिणाम क्या हुआ? यदि विष खाकर मरता तो राजा भरत को इतना नुकसान न होता, एक जन्म जाता। लेकिन विषय चिंतन, हाय मैंने पाला, मैंने रक्षा की, मैंने बचाया, अब मैं मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद इसकी रक्षा कौन करेगा, इसका क्या होगा, ये क्या है, विषय चिंतन है कि नहीं बोलो। परिणाम क्या हुआ, मनुष्य योनि में जन्मा राजा पशु योनि में जाकर पैदा होना पड़ा कि नहीं, क्योंकि मरते समय पशु का चिंतन किया, पशु योनि में चला गया वो। ये देख लो तो खतरनाक क्या है। शंकराचार्य जी 1200 वर्षों से चिल्लाते रहे, हम जहां के वहीं हैं, हम फिर भी विषय के प्रति ही आसक्त है। विषय नहीं मिला तो बवाल खड़ा हो गया। पत्नी को कहा था आज पकौड़े बनाना, उसको फुर्सत नहीं हुई, नहीं बनाई, और पकौड़े के जगह उसने क्या बना दी, सूखी बाजरे की रोटी। बवाल शुरू कर दिया, और तो बाजरे की रोटी में जो स्वाद आता वो भी गया है? बड़े प्रेम से खाता तो क्या स्वाद आता बाजरे की रोटी में, ज्वार की रोटी में। अब जो स्वाद था, जो रस था, वो रस भी सुखा दिया भाई, बवाल कर दिया।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. The next program is Shiva Kirtana. In this, you are about to listen Ananda Natana Prakasham song sung by Sri D.K. Jayaraman. Thank you. Om Namah Shivaya.